गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उठो उठो और एक फ्रेश स्माइल करने का। ये एक दिन आ चुका है तो इसकी शुरुआत करो, क्योंकि आज का दिन फिर से एक नई कहानी लिखने का मौका लेकर आता है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और आप सुन रहे हो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल दिन की एक खूबसूरत से और बेहतरीन से इस विचार के साथ। तो बात कुछ ऐसी है कि जिंदगी में दो चीजें कभी वेस्ट मत होने दो, एक वक्त और दूसरा मौका, क्योंकि ये दोनों वापस नहीं आते। बिल्कुल सही बात है ना, कभी हम सोचते रह जाते और लाइफ आगे निकल जाती है। तो आज से एक छोटा सा रूल बना लो, सोचो कम करो ज्यादा। अगर आज कुछ नया ट्राई करना है, किसी को थैंक यू बोलना है या अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाना है तो बस बढ़ा दो यार। और हाँ, चाय की पहली सिप के साथ एक पॉजिटिव थॉट जरूरी, तो क्योंकि मॉर्निंग का मूड ही पूरा दिन सेट करता है। तो चलिए फिर इस ब्यूटीफुल सुबह को और भी स्पेशल बनाते हैं गुड म्यूजिक के साथ। स्टे ट्यून और मुस्कुराते रहो विद आरजे अदनान इन द शो।

0: परसों का कारवा आरजी अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक बार एक बहुत बड़े और सफल बिजनेसमैन ने अपने शहर के सबसे विद्वान संतों को अपने घर भोजन करने बुलाया। बिजनेसमैन बहुत अमीर था, उसके पास आलीशान बंगला, गाड़ी और सब कुछ था, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था। उसे हर चीज में कमियां नजर आती। जब संत उसके घर पहुंचे तो बिजनेसमैन ने उनका स्वागत किया। भोजन के दौरान बिजनेसमैन अपनी परेशानियां बताने लगा। महाराज, नौकर ठीक से काम नहीं करते, व्यापार में बहुत तनाव है और ये शहर भी बहुत शोर शराबे वाला है, मेरी जिंदगी में कोई सुकून ही नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, भोजन के बाद मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। भोजन खत्म हुआ, संत ने अपने पैर से जूता निकाला। उनके मोजे से अंगूठे के पास एक छोटा सा छेद था। बिजनेसमैन की नजर तुरंत उस छेद पर गई। उसने सोचा, इतने बड़े संत और फटे हुए मोजे पहनते हैं। संत ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, बेटा, तुम्हें सामने खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? बिजनेसमैन ने खिड़की के बाहर देखा और कहा, महाराज, बाहर आपका सुंदर बगीचा है, रंग बिरंगी फूल, चिड़िया, सब कुछ इस बगीचे में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और रोशनी तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अद्भुत दृश्य है। तब संत ने शांति से कहा, बेटा, तुमने अभी खिड़की के बाहर इतना सुंदर संसार देखा, लेकिन पिछले 5 मिनट से तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे मौजे के उस छोटे से छेद पर है। बिजनेसमैन दंग रह गया। संत ने आगे समझाया, यही तुम्हारे जीवन की समस्या है। ईश्वर ने तुम्हें इतना बड़ा बगीचा यानी कि जीवन, परिवार, धन दिया है, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान जिंदगी के उन छोटे छोटे छेदों पर है, यानी कि कमियों और परेशानियों पर है, वहां पर ही तुम्हारा ध्यान अटका हुआ है। इसलिए नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने हमें यही मिलता है कि हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी है, बल्कि वैसी होती जैसा हमारा नजरिया है। अगर हम कमियां ढूंढते रहेंगे तो दुखी रहेंगे, और अगर हम अपनी खूबियां और आशीर्वादों पर ध्यान देंगे तो हर पल सकारात्मक रहेगा। तो कुछ बदलाव करना चाहोगे तो वो नजरिए का करो। तो ये बात याद रखो आप भी।
0: किस्सों का कारवा आरजी अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. All is सुबह उठते ही ना तो हम सबका पहला प्यार क्या होता है पता है? मोबाइल फोन। सुबह उठते हम सबसे पहले चेक करते किसी का नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज आया, बरोबर ना? लेकिन अगर एक छोटी सी हैबिट चेंज करना है तो हेल्थ को बहुत फायदा हो सकता है इससे, और वो हैबिट है सुबह खाली पेट एक ग्लास पानी पीना। इसका फायदा भी बहुत सिंपल है और बहुत खास है। बॉडी हाइड्रेट होती है, डाइजेशन बेटर होता है और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव हो जाता है। मतलब बॉडी को एक नेचुरल गुड मॉर्निंग मिल ही जाता है। बहुत लोग ना बोलते हैं कि मॉर्निंग में टायर्ड फील होता है यार, कभी रीजन सिर्फ डिहाइड्रेशन भी होता है। और हाँ, सुबह पानी पीने से स्किन फ्रेश फील करती है और बॉडी के टॉक्सिस को फ्लश आउट करने में भी मदद होती है। तो कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करो। अलार्म बजे मोबाइल साइड में रखो और एक ग्लास पानी से दिन की शुरुआत करो। छोटी आदत लेकिन हेल्थ के लिए बड़ा फायदा, समझे? स्टे ट्यून्ड।

फरमाइशें पूरी करना तो मेरा काम है, मेरा अधिकार है, बस आप आपकी फरमाइशें बताते रहिएगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। और वक्त हो चुका है आपकी फरमाइशें पूरी करने का, तो आज अपने पास गाने की फरमाइश आई है सुनील काळे की तरफ से इस गाने के लिए।

प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। फिल्म हीरो जो कि 1983 में आई थी, इस फिल्म से गाना है। इसे लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी और मनहर उदास ने अपनी आवाज दी है और म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। लिरिक्स आनंद बख्शी जी के थे और स्क्रीन पर अपने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी जी की प्यारी सी केमिस्ट्री हमें दिखती है। ये गाना आज भी हर लवर्स का फेवरेट है क्योंकि ये मैसेज देता है कि सच्चे प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। तो इसी गाने की फरमाइश की है दोस्तों, ये फरमाइश वाला गाना भी हम पूरा करते हैं। बाय द वे आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और बाकी तो अभी इंजॉय करते हैं फरमाइश वाला गाना ऑन MGM 90.8 FM।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है अबाउट फ्रॉड के बारे में। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। मोबाइल तो हम सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है ऐसा लगता है। फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एसएमएस, ये सब कुछ हम यूज करते हैं और फ्रॉड इसी के जरिए बहुत होते हैं। एक क्लिक के जरिए, एक कॉल के जरिए या फिर एक लिंक के जरिए आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली होता है। तो डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड ट्रेंड्स इन इंडिया, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में पूरे साल में एसएमएस स्कैम सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं। 146% एसएमएस स्कैम हो रहे हैं। एक साल के अंदर तकरीबन 20,000 करोड़ से भी ज्यादा स्कैम हो गया है। इतना पैसा स्कैमर ने लूटा है एक क्लिक के जरिए। इसमें टॉप में है एसएमएस स्कैम, मतलब आपके पास एक एसएमएस आता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर आप क्लिक करते हो लिंक पर और वो लिंक ओपन होने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट की बात होती है या फिर आपको डिजिटल अरेस्ट करने वाली बात होती है। कुछ ऐसे अलग अलग स्कैम्स होते हैं आपके साथ और आपके बैंक से पूरा पैसा गायब हो जाता है। और एक बात सामने आई है कि जो फ्रॉडर होते हैं वो पैसे पूरे ट्रांसफर होने तक आपके साथ बिजी रहते हैं, आपको बातों में उलझाते हैं और आपके साथ ही कॉल पर बात करते हैं। और ये क्यों करते हैं पता है? क्योंकि जब ट्रांजेक्शन होता है तो आपको कभी ना कभी शक हो ही जाता है, यार ये ट्रांजेक्शन ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप किसी ना किसी से एडवाइस लेते हैं। तो पूरा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने तक आप ये एडवाइस ना ले और उस फ्रॉड के साथ ही आप बातें करते रहे, उसके बातों में आपको उलझाता है ताकि फ्रॉड पूरा कम्प्लीट हो और पैसा उसके अकाउंट में आ जाए। तो ये एक टेक्निक वो यूज करते हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा एंड जो एसएमएस आपके पास आते हैं वो वैलिड है, सच है या झूठ है ये भी आप चेक कीजिएगा, वरना एक क्लिक आपका नुकसान करवा सकती है। देखो, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में अपने शो में तो मैं हर दिन बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अपने शहर में भी ना बहुत फ्रॉड से ऑनलाइन हो रहे हैं। सो याद रखिए, कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक मत करें, किसी भी एसएमएस को ओपन ना करें जो आपको पता ना हो और किसी भी मेल पर रिप्लाई ना करें जो अनआइडेंटिफाई हो। तो बी सेफ, बी केयरफुल।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

लेट्स टॉक अबाउट दिल की बात जनाब। तो बात कुछ ऐसी है कि आज है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि दिल वाला दिन है आज। एंड या बदल आज अपन बोलना आहोत अपने हृदयाच्या आरोग्याबद्दल। आपल्या सोबत आहेत डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉक्टर कमला।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। कांतारा का ये गाना मेल सिंगर ने गाया है या फीमेल सिंगर ने?
1: कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है।
0: सुनकर लगता है कि ये किसी फीमेल सिंगर की

0: वॉइस होगी, लेकिन नहीं, ये एक मेल सिंगर की वेंकटेश डीसी।
1: अरुमद कल्लनु यडविद मनुजना बेरलिन गायव।
0: उनकी नेचुरल वॉइस हाई पिच है और उस पिच में गाना वो कंफर्टेबल समझते हैं, लेकिन इस गाने में थोड़ा चेंज है और साथ ही साथ उनकी टोन बहुत सॉफ्ट है और इस गाने में उन्होंने यूज की है हेड वॉइस और मिक्स वॉइस, इसी वजह से उनकी आवाज पतली हल्की और फीमेल जैसी साउंड करती है। तो ये कन्फ्यूजन सिंगर के वजह से नहीं बल्कि सिंगर की यूनिक वोकल रेंज, सिंगिंग टेक्निक और म्यूजिक प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

अरे कहाँ चल रहा है, जा तू कहे। हेलो, वक्त हो चुका है 10:41 का और अदनान आपके साथ आ चुका है। बाय द वे, चल रहा है तो फिलहाल आप अपने ऑफिस के लिए चलिएगा, निकलिएगा और ज़रा ट्रैफिक अपडेट भी लेते हैं। तो शहर में अभी इस वक्त ना तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने वाला है, वो है क्रांति चौक से आप ऊपर जाओगे बाबा पेट्रोल पम्प तक, तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलने ही वाला है। इसी के साथ दूध डेयरी के पास फिलहाल ट्रैफिक कम है, लेकिन आकाशवाणी सिग्नल तक पहुँचते आपका सामना ट्रैफिक होने ही वाला है। और सेवन हिल के नीचे से ना तो सुबह के वक्त इस टाइम पर ट्रैफिक हल्का हल्का सा होता है, और बाकी सिडको सिग्नल की बात क्या ही करें, वहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू है, तो वहाँ पर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, बस ट्रैफिक ही कर रहा है। ये भी याद रखिएगा, जानना रोड ट्रैफिक अपडेट था ये। अगर इस रूट से आप जा रहे हो तो थोड़ा घर से जल्दी निकले ताकि आप ऑफिस वक्त पर पहुँचे। किसी का 11 बजे होता है तो वो तो पहुँच नहीं वाली होगी, और जो बंदे लेट हो चुके हैं तो ट्रैफिक में ज़्यादा लेट ना करे, जल्द से जल्द निकला करे घर से ताकि हर जगह वक्त पर पहुँचे, वरना कोई गाड़ी छूट जाएगी तो बाद में पछताना पड़ेगा। बाकी तो अब छूटने से कुछ नहीं छूटेगा, बस गाने आपके लाइफ में एंजॉय करते रहेंगे, मतलब क्या ही बोले आप, अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। कभी कभार कुछ बोलना होता है तो राइमिंग गलत ही हो जाता है, ऐसी गलती आपके साथ भी हो सकती है, तो बी केयरफुल। एंड उड़ जा रहे भाई ये गाने के साथ रॉक और ट्विस्ट से, स्टे ट्यून्ड टू 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

विशाल ददलानी की आवाज में ये गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे बैंग बैंग इस फिल्म से, तू तू मेरी मैं तेरा, क्या बात है यार। ये एग्जैक्टली फीलिंग ना तो हमें वीकेंड को ही आती है, तू तू मेरी मैं तेरा, बाकी दिन तो बस गुजर ही जाते हैं। हेलो अदनार आपके साथ है और घड़ी में बज चुका है 10:55 हो चुका है, यानी कि मेरा अभी आपसे अलविदा लेने का वक्त हो गया। चलो फिर मैं तो चला अब अपनी गली भाई, आधी सैलरी तो अपनी जमा हो गई है, अब बाकी काम भी करना है। बाकी आप अपने ऑफिस में पहुंच गए होगे तो रिलैक्स रहने का मूड है तो रहिएगा और काम को काम के तरीके से ही कीजिएगा, ज़्यादा लोड वोड मत लीजिए यार, जिंदगी है कि आज जिंदा दिली से जिए। और मिलते ठीक शाम 7 बजे भी, वैसे आजकल ना तो मेरी और आपकी मुलाकातें दो टाइम हो रही है, सुबह और शाम भी, तो बातों का सिलसिला और आपसे मुलाकातों का एक मिलसिला, वाह क्या बात है, कुछ भी वो बना रहेगा ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे विथ नेक्स्ट सॉन्ग।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: मुझे लगता है कि गाना हम थोड़ा सा गलत सुन रहे थे। गानों के किस्सों में आरजी अदनान आपके साथ हैं ऑन MGM 90.8 FM। असल में इस गाने में प्यार में हारा हुआ एक आशिक है, यानी कि वो आशिक बाबा बुल्ले शाह से गुहार लगा रहा है कि बुल्ले शाह आप तो इश्क को इतने अच्छे से समझाते हो, तो मुझे अपना शागिर्द बना लो। इस गाने में एक और बढ़िया लाइन है,
1: मैं कागुल से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूं।
0: क्या ये लफ्ज काबुल है? नहीं। या मैं तागुल है? नहीं, असल में ये लफ्ज है कागुल। कागुल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि चिड़ियाओं को खेतों से दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर तितलियां ना तो चिड़ियाओं से बचने के लिए कागुल के आसपास मंडराती है, उससे लिपट जाती है और कुछ पल के बाद एक मुहाफिर की तरह इमिग्रेट हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है।
1: एक पल को ठहरूं, पल में उड़ जाऊं।
0: बाबा बुल्ले शाह ने अपने गुरु शाह इनायत कादरी के प्रेम में नाचते नाचते जो कारवा बनाया था, हमारा आशिक भी उसी कारवा में जगह बना रहा है।
1: तेरे कारवा में शामिल होना चाहूं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं।
0: कितने खूबसूरत तरीके से अमित भट्टाचार्य ने इश्क और गुरु दोनों का इम्पोर्टेंट इस गाने में हमें बता दिया है, लेकिन इसके पहले हमें पता ही नहीं था ना ऐसा कुछ होता है। तो ये थी इस गाने के पीछे की सुंदर सी कहानी। चलिए फिर यही गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज।

0: अगर आप घर पर सबसे छोटे होगे और आपसे बड़े भाई बहन होगे ना, तो आप पर बहुत अन्याय होता है, ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। और बात कुछ ऐसी है कि यार, अगर घर पर आप छोटे होगे और आपसे बड़े आपके भाई बहन होगे, और जब वो आपको परेशान करते हैं, मारते हैं, काम बोलते हैं, बहुत हम थक जाते हैं उनसे, और जब हम उनकी कंप्लेन मम्मी को जाकर करते हैं और कहते हैं, मम्मी मम्मी मुझे कुछ कहना है, मम्मी कहती है
1: बक,
0: फिर हमारे दिल से निकलता है,
2: हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है।
0: इतना कहने के बाद मम्मी का गुस्सा आसमान छू लेता है और मम्मी की जुबान से निकलता है,
1: तेरा मालिक है वो, तमीज से पेशा उसे, जाकर सॉरी बोलो से।
0: अब हम जैसे छोटों की कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, मेरी तो पता नहीं कोई सुने या ना सुने, लेकिन आपकी मैं सुन लूंगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा अपने घर पर, तो यार आप अपना दर्द मेरे साथ बांट सकते हो।
3: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है तो बात है।
1: एक लड़का था, नाम था राघव। रोज सुबह उठता, ऑफिस जाता, वापस आता और यही रूटीन चलता रहा। जिंदगी में सब कुछ ठीक था, सैलरी, जॉब, घर, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। सुकून, मुस्कान, वो मैं खुश हूँ वो वाली फीलिंग। एक दिन वीकेंड पे टेरिस पर बैठा था, एक 8 साल का बच्चा दिखा उसे, पतंग उड़ा रहा था। पतंग कट गई, बच्चा हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, कल फिर से उड़ा लूंगा। राघव उस पल बस एक अपनी सोच में डूब गया कि मैं एक पतंग कट जाने के बाद भी हंस नहीं सका यार, इस बच्चे की हंसी देखकर भी। और ये बच्चा एक पतंग कट जाने के बाद यही कह रहा है कि यार कल फिर से उड़ा लूंगा। उसी दिन ना तो उसने डिसाइड किया, यानी कि राघव ने, कि हर दिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालेगा, कुछ नया करेगा बिना किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार किए। अब राघव वही काम करता है, वही जिंदगी है, लेकिन अब हर दिन थोड़ा सा जीता जरूर है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और जब पतंग कटती है तो कहता है कल फिर से उड़ाएंगे। यहाँ पर बात पतंग की नहीं थी, समझदार हो समझिएगा। तो दोस्तों, जिंदगी बड़ी नहीं है, बस बड़ी प्यारी होनी चाहिए। और अगर कभी लगे कि सब रिपीट हो रहा है तो याद रखना, एक छोटी सी उड़ती हुई पतंग भी जिंदगी बदल सकती है। और एक जरूरी बात के हमें जिंदगी बस काटनी नहीं है,

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

वैसे बात जनरेशन की कर रहा था ना, तो एक बात तो है, थैंक गॉड, क्योंकि आज की जनरेशन टीवी नहीं देखती। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमटीएम 90.8 एफएम। भाई साहब, एक टाइम था जब ना तो टीवी न्यूज चैनल के ऊपर जो न्यूज आती थी उसके ऊपर लोग आग बन करके भरोसा करते थे, और लगता था कि भाई ये एंकर जो कह रहा है ना एकदम सच कह रहा होगा। और आज एक वक्त आ गया है जब हर किसी को डाउट होता है, यार ये जो एंकर ने कहा अभी न्यूज चैनल में, ये सच बात होगी क्या, या झूठ कह रहा होगा, या बस टीआरपी के लिए कह रहा होगा। मैंने खुद देखा, एक टाइम था हमारे बचपन में जब पापा न्यूज चैनल देखते थे, हर दिन न्यूज आती थी, सलीके से आराम से समझाती हुई आती थी, नो टीआरपी गेम, नो चिल्लाना, नो इसको उसको बुरा भला कहना, हर किसी की इज्जत करना, और लगता भी था कि हम टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। और आज के वक्त में लगता है कि यार हम न्यूज नहीं कॉमेडी शो देख रहे हैं, और हर कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करता है, और पता नहीं लोग कहां से लाते हैं वो, जो कि डिबेट कम और धमकी, चिल्लाना और फेक न्यूज ज्यादा देते हैं। सो थैंक गॉड हमारी जनरेशन को, क्योंकि हमने टीवी पर न्यूज चैनल देखना कम कर दिए, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना थोड़ा ज्यादा किया, क्योंकि रील्स के ऊपर आज के उसमें जितनी सारी न्यूज आ रहे हैं ना, वो लगता है कि यार ऑथेंटिक न्यूज है, ऑन ग्राउंड वाली न्यूज है, उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है। हाँ, कुछ कुछ होते हैं फिल्टर लगाए वाले न्यूज और फेक न्यूज भी, वो समझ में आ जाते, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे है यूट्यूब पर कोई मिक्स मसाला नहीं होता। तो सवाल यही होता है यार कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वो जिंदा है कि आज के वक्त बड़ा सवाल है। जवाब मिले तो जरूर बताना, और अपने गिरेबान में भी झांक लेना, समझदार को इशारा काफी।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

एक टाइम था यार जब ना तो हम कहते थे अरे जेंसी ये तो बस रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, दो मिनट से ज्यादा इनसे फोकस होता ही नहीं है। आई मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 FM। लेकिन जब किसी बात पर ये जनरेशन सीरियस हो जाती है तब सबको समझ आता है कि स्क्रीन के पीछे सिर्फ फिल्टर नहीं ओपिनियन भी होते हैं। और ये सिर्फ जेंजी ही नहीं मिलेनियल्स भी काम करते हैं ऐसे ही। एक जनरेशन ने इंटरनेट बनते हुए देखा और दूसरे ने इंटरनेट को अपनी आवाज बनाई। और वो आवाज किस तरीके से है आज हम सभी लोग देख रहे हैं। वैसे ऑफिस में भी ऐसे होता है जेंजी और मिलेनियल्स का। जेंजी सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करता बल्कि पूछते भी है कि ये प्रोसेस ऐसे ही क्यों है, इसको बेटर कैसे बना सकते हैं। अगर बॉस कुछ हद से ज्यादा ही परेशान कर रहा है या सैलरी लेट आ रही है या अपने काम से ज्यादा काम दिया जा रहा है तो मिलेनियर्स क्या करते हैं या 90s किड्स, उनको आदत हो गई है ना, चलो बॉस ने कहा है ना हम कंप्लीट कर देते हैं, आगे काम आ सकता है बॉस अपने लिए। लेकिन जेन जी ऐसा नहीं करते, जेन जी डायरेक्टली कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते। इस वजह से जेन जी पसंद है भाई अपने को। देखो दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है, मिलेनियर्स को और 90s किड्स को उस चीजों की आदत हुई है प्रेशर झेलने की, जेन जी वैसे नहीं है। तो अगली बार किसी जनरेशन को सिर्फ मेम्स या स्टेरियोटाइप से जज मत करना, क्योंकि जनरेशन की ताकत उसकी एज में नहीं उसके सोचने, सवाल पूछने और सही वक्त पर सही स्टैंड लेने में होती है। और सवाल पूछने की आदत जेन जी में बहुत है, नोटिस कीजिएगा ये चीज। एंड बाकी तो स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, SIDCO N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है अबाउट फ्रॉड के बारे में। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। मोबाइल तो हम सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है ऐसा लगता है। फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एसएमएस, ये सब कुछ हम यूज करते हैं और फ्रॉड इसी के जरिए

0: एक्सेस करने वाली बात होती है, कुछ ऐसे अलग अलग स्कैम्स होते हैं आपके साथ और आपके बैंक से पूरा पैसा गायब हो जाता है। और एक बात सामने आई है कि जो फ्रॉडर होते हैं वो पैसे पूरे ट्रांसफर होने तक आपके साथ बिजी रहते हैं, आपको बातों में उलझाते हैं और आपके साथ ही कॉल पर बात करते हैं। और ये क्यों करते हैं बताए? क्योंकि जब ट्रांजेक्शन होता है तो आपको कभी ना कभी शक हो ही जाता है यार ये ट्रांजेक्शन ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप किसी ना किसी से एडवाइस लेते हैं। तो पूरा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने तक आप ये एडवाइस ना ले और उस फ्रॉड के साथ ही आप बातें करते रहे, उसके बातों में आपको उलझाता है ताकि फ्रॉड पूरा कम्प्लीट हो और पैसा उसके अकाउंट में आ जाए। तो ये एक टेक्निक वो यूज करते हैं, तो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा। एंड जो SMS आपके पास आते हैं वो वैलिड है, सच है या झूठ है ये भी आप चेक कीजिएगा, वरना एक क्लिक आपका नुकसान करवा सकती है। देखो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में अपने शो में तो मैं हर दिन बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अपने शहर में भी ना बहुत फ्रॉड से ऑनलाइन हो रहे हैं। सो याद रखिए कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक मत करे, किसी भी SMS को ओपन ना करे जो आपको पता ना हो और किसी भी मेल पर रिप्लाई ना करे जो अनआइडेंटिफाई हो। तो बी सेफ बी केयरफुल
1: only on MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और

0: परसेंट मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स। इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हेलो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया हो तो हो गए अभी आप।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, आरजे अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी आरजे अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूं ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर डीएम में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, आरजे अदनान, अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। आरजे अंडरस्कोर ADNAN, इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

Yeah.